나알호기 나알호비 에사 사진 키 카나 उम्र पर्दे रिश्ते पसंद मेनू मैं वक्त गुजार के की करना मैं जो कहा तेनू समझ नहीं आया फिर तेनू दस के की करना छड़ मोहब्बत तेरे वस दी गल नहीं थोड़े दिनां लई की करना जो नाल होके नाल ना होवे ऐसा सज्जन की करना जिथे यकीन ही खत्म हो जाए उथे ते फिर गल करन दा फायदा ही नहीं हुंदा गीत सुनांदी आं तुहानू तेजी पन्नू दी आवाज़ च दिस कमिंग अप इज ट्रस्ट इश्यूज़

96.1 FM मन की रतौले क्रिय आवाज दे विच ते हुन अगला गीत है जेनी जल कमिंग अप लंबियां रातां गहरे जज्बातां दी कहानी जद कोई व्यक्ति थोड़े जीवन दा हिस्सा बन जांदा कदे कदे किसी दी आदत बन जाना सचमुच सुहावना हुंदा पर जदों व्यक्ति दूर हो जांदा ते ओ खालीपन दा एहसास कराउंदा ए गाने विच सारे ओ जज्बात ने ते मैं ते थानू एही कहूंगी के अपने अंदर अपना घर बनाओ जित्थों थानू सुकून मिले सब तो पहला सब तो ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੰਜੋਏ ਦਿਸ ਵਨ ਕਮਿੰਗ ਅਪ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਆਦਤ ਬਾਈ ਜੈਨੀ ਜੋ